0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोता, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक एवं उनकी मां की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यूक्रेन में 2022 में बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने और लगातार 5 साल तक युद्ध जारी रहने के कारण कई माताओं ने अपने प्रिय बेटों को खो दिया या उन माताओं के लिए अत्यंत दुखदायी है। लेकिन इस पीड़ा के बावजूद कुछ माताओं ने अपने साहस का परिचय दिया और वे प्रेरणा स्रोत बन गईं। ओलेना उन्हीं माताओं में से एक हैं। कहानी यूक्रेन के पुलिस ऑफिसर तारस कौरिक और उनकी मां ओलेना की है। तारस की फरवरी 2023 में मौत हो गई। यह दर्द, याद और उम्मीद से भरी कहानी है और साथ ही शहीद एवं लापता लोगों के परिवारों के लिए सांत्वना। मेरे लिए और हर माँ के लिए वह सबसे अच्छा बेटा था। इन्हीं शब्दों के साथ ओलेना अपने बेटे तारस कौरिक की याद करती हैं, जिनका जन्म 1988 में पश्चिमी यूक्रेन के हालिबोका गांव में हुआ था। उनकी कहानी में सालों के प्रवासन, युद्ध और दुख के साथ साथ एक हिम्मत भी शामिल है, जिससे एक माँ अपने बेटे की याद को संजोती और अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल देती है। 1999 में ओलेना ने यूक्रेन छोड़कर इटली में काम करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने अपने मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण लिया था, ताकि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सके। तारस अपनी माँ से दूर बड़ा हुआ। अपना कैरियर चुनते हुए वह पुलिस बल में शामिल हुआ। उसने 2014 में देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लौटने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन बड़े पैमाने पर रूसी हमले ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। मार्च 2022 में तारस को माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए बूचा, एरपिन और होस्टोमेल शहरों में भेजा गया। वहीं उन्होंने युद्ध के सबसे बड़े असर देखे। ओलेना बताती हैं कि जब वे घर लौटे तो वे बहुत बदल गए थे। उन्होंने जो देखा था उसका उन पर बहुत असर पड़ा था। पत्नी और 8 साल के बच्चे के होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जब उनकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उन्हें आज भी याद है। लोग युद्ध से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं वहां ज्यादा काम का हूँ। यह फैसला डोनेस्क इलाके में अनाथ बच्चों के साथ काम करने के उनके अनुभव से भी आया था। उन्होंने अपने फैसले का कारण बताते हुए माँ से कहा, उन बच्चों का कोई नहीं बचा।

फरवरी 2023 को माँ और बेटे ने देर रात तक फोन पर बात की। तारस जानता था कि उसकी यूनिट को बकमुट इलाके में भेजा जाएगा। उसने अपनी माँ को बताया, 2 हफ्ते पहले यहाँ 250 आदमी पहुँचे थे, 1 हफ्ते बाद अब सिर्फ 50 जिंदा बचे। अगले दिन उसने उससे फिर से भरोसा दिलाया, हम मोर्चे पर जा रहे हैं, हम शनिवार को बात करेंगे, लेकिन वह फोन कॉल कभी नहीं आया। कई दिनों की परेशानी, तलाश और उम्मीद के बाद ओलेना इटली छोड़कर यूक्रेन चली गई। हफ्तों तक अपने बेटे को अस्पतालों में ढूंढा और इस सोच पर अड़ी रही कि उसे कैदी बना लिया गया है। वह कहती रही, मुझे यकीन है कि तारस जिंदा है। इंतजार के उन दिनों में ओलेना ने रेड क्रॉस का भी सहारा लिया और दूसरे परिवारों के साथ पोप फ्रांसिस से एक मुलाकात में शामिल हुई। बारी में संत निकोलस के पौत्र अवशेष के सामने एक ही प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को लौटा दें, चाहे जीवित या मृत। कुछ दिनों बाद तारस का शव मिला। वे याद करती हैं कि उनकी ममता की चीख मीलों तक सुनी जा सकती थी, एक ऐसा दर्द जिसे समय के साथ उनके परिवार और समाज ने सहारा दिया। आज ओलेना ने अपने समुदाय में एक संघ बनाया है जो शहीद सैनिकों की माताओं और पत्नियों को एक साथ लाता है। हर साल मदर्स डे पर वे उन लोगों की मदद करने के लिए एक साथ आने, प्रार्थना करने और याद करने का अवसर आयोजित करती हैं जो इसी तरह का दुख झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी निश्चित किया कि 18 फरवरी 2023 को शहीद हुए तारस के सभी 22 साथियों को राजकीय सम्मान मिले, जिसको बाद में किया गया। उनकी दुआएं खासकर उन परिवारों के साथ हैं जो अभी भी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। वे कहती हैं, मैं अक्सर उन माताओं के बारे सोचती हूं जो अभी भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। इस दर्द के लिए कोई शब्द नहीं है, हम बस जिंदा हैं। इसी अनुभव ने उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। एक माँ ने उनसे कहा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बात करनी है। इसलिए उन्हें यकीन है कि नज़दीकी, याद और इंसानियत में बहुत ताकत होती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक और उनकी माँ की कहानी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आज कल की पीढ़ी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, समाज में नई और पुरानी पीढ़ी की सोच से

0: आज के बुजुर्ग दोराहे पर खड़े हैं। युवा पीढ़ी नई सोच के साथ जिंदगी के पथ पर दौड़ रही है तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। कुछ लोगों का मानना है कि बुजुर्ग आज के युवक युवतियों पर तीखी टीका टिप्पणी करते हैं। इनका कहना है कि उनके जमाने में तो मर्यादा थी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग दकियानूसी परंपराओं को ढो रहे हैं। नई पीढ़ी को यह याद करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। उनका कहना भले ही दकियानूसी लगे पर वे उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। युवा बुजुर्गों की मदद करें, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखें तो बुजुर्गों को भी युवाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका आज कल की पीढ़ी।
1: क्या ये आजकल की पीढ़ी भी, जब देखो तब आपस में फिल्मों की ही बातें करते रहते हैं। अब वो शर्मा जी का बबलू देखो, अरे उसके पिताजी लाख कह रहे हैं कि दूसरे दिन परीक्षा है भाई, जरा पढ़ लिख लो। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब है।
2: अब आप क्यों किसी और के लिए अपना खून जला रहे हैं? वो बबलू अच्छा खासा टॉपर लड़का है, और मान लिया कि कल को वो हो भी गया फेल तो उसकी फीस हमें तो नहीं भरनी है।
1: यही बस यही बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है, हमें क्या लेना देना है? अरे भाई, हम सभी ऐसे सोचने लगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा?
2: आजकल सभी अपना अपना सोचने को सक्षम है। जो किसी और के विषय में सोचता है ना, उसे पंचायती कहा जाता है।
1: हाँ, आजकल सभी को अपना अपना काम करना जो पसंद है, किसे लेना देना है कि इस बूढ़े को क्या चाहिए। अरे बहू शांभवी, वो केले के पकौड़े बनाए क्या? कई दिनों से मन कर रहा था।
3: बना दिए हैं पिताजी, आइए, प्याज और पालक के भी बनाए हैं।
1: हाँ हाँ ठीक है, एक हाथ बार मेरे मन का क्या बना दिया, ऐसा ढिंडोरा पिटा जा रहा है कि बस। आजकल किसी के पास समय ही कहाँ है कि माता पिता के पास बैठकर बातें करें।
4: पिताजी कहाँ हैं आप? अरे वाह, पकोड़े बनाए हैं। पिताजी आज मैंने हाफ डे लिया है, शाम को हम सभी सिटी पार्क में जाएंगे, वहाँ से सेंट्रल होटल में खाना खाकर ही लौटेंगे।
1: क्या फिजूल खर्ची लगा रखी है, आजकल की पीढ़ी के पास पैसे क्या आ गए हैं, हर चीज को पैरों की नोक पर ही रखते हैं।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उसने छुट्टी ली है आपके लिए, ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं फिजूल खर्ची का।
1: और नहीं तो क्या, जवानी है, फुर्ती है, इसलिए पैसे का जोर दिखाना चाह रहा है। कल को मेरे जैसा रिटायर्ड हो जाएगा तब मालूम होगी पैसे की कीमत, यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है।
3: पिताजी पानी, पकौड़े और लाऊं?
1: रहने दो। अरे शांभवी, वो गुप्ता जी ने कुछ कागज दिए थे टाइप करने को, हो गए हैं क्या?
3: जी पिताजी हो गए हैं, आपके दराज के पास रख दिए हैं।
2: सुनिए जी, आपके लिए गुप्ता जी का फोन है।
1: हाँ हाँ आया।
3: माँ मैं क्लास जाकर आती हूँ।
2: हाँ बेटे, मुन्ना सो रहा है क्या?
3: जी सो रहा है, उसका दूध बनाकर रख दिया है, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहेगा।
2: तुम आराम से जाओ बेटा, आज क्लास में परीक्षा है ना?
3: जी अच्छा मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा।
1: हाँ गुप्ता साहेब बोलिए, क्या हाल है? अरे हमारा क्या है भाई, बस वक्त को कोस रहे हैं और उसी को काट रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी, अरे अब अपना जमाना थोड़ी रह गया है। आजकल जिसे देखो बस अपना ही सोचता है, अपना काम करने का किसी के पास समय थोड़ी है। अरे हाँ, वो तुम्हारे कागज बहू ने टाइप कर दिए हैं, अब आजकल की बहुओं से थोड़ा ही होता है घर का काम धाम, बस अपने बच्चों को सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। बस यार चल रहा है, चल रखता हूँ, अपना काम तो खुद ही करना होगा। अपने बुढ़ापे में कहाँ वो सुख जो अपने बाप दादाओं ने भोगा। अब कुछ पत्रिकाओं का चंदा भरना था, अब लगता हूँ उसी काम में।
4: पिताजी ये लीजिए।
1: ये क्या है?
4: ये रसीदें हैं पिताजी, आप हर महीने जो पत्रिकाएं मंगवाते हैं उनकी।
1: हाँ हाँ रख दे, जरा सा काम क्या कर दिया, प्रमाण पत्र मांगने चला है। और वो आश्रम का ड्राफ्ट बनवा दिया था?
4: जी बनवा दिया था, और मैं खुद जाकर वहाँ के मैनेजर से मिल आया हूँ। वो कह रहे थे कि आश्रम में 5 और सदस्य आने वाले हैं, इसलिए उनका खर्चा मैंने नकद भर दिया है। और पिताजी ये आपके लिए लाइब्रेरी से किताबें बदला कर लाया हूँ।
1: हाँ रख दो, किसे आजकल बूढ़ों की फिक्र है, जरा असुविधा हुई नहीं कि कर दिया घर से बाहर। सभी जगह एक ही हाल है, ये आजकल की पीढ़ी तो बस
2: बस भी करिए जी, कितना बोल रहे हैं। बहू जो कहे वो हुक्म बजाने को तैयार है, आपका छोड़ आपके दोस्तों का भी काम कर देती है। बेटा आपके खाने पीने, दवा दारू, मनोरंजन और समाज सेवा तक का ख्याल रख रहा है, और आप हैं कि उन्हें उन लड़कों के समकक्ष रख रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है।
1: तो और क्या, तुम इस भ्रम में मत रहना वसुधा कि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। ये जो अपनी जायदाद है ना, उसके पीछे हो रहे हैं सारे नाटक। ये आजकल की पीढ़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो मिश्रा जी को देखा था, कैसे नरम दिल बनते थे। सारी प्रॉपर्टी जीते जी बेटे के हवाले कर दी और अब जा पहुँचे वृद्धाश्रम।
2: देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस समय हमारे देश में 35 करोड़ से भी ज्यादा बूढ़े हैं जो अपनी संतानों पर आश्रित हैं, और देश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कुल इनके 5% से ज्यादा नहीं है जो घर से निकाले गए। तो क्या उन 5% नई पीढ़ी के लोगों के पीछे आप सभी को बदनाम करते फिरेंगे?
1: लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे निकले तो, यदि कल को उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल लिया तो?
2: देखिए, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी आपको हाथों पर उठाकर रखेंगे, लेकिन ढेर सारी जायदाद रखकर भी आप ये फूटी जबान चलाएंगे तो आपके प्रति किसी के मन में क्या सम्मान रह जाएगा?
1: ये सब कुछ तुम्हें सुधीर ने कहा होगा।
2: वो क्यों कहने लगा कुछ भी? क्या मेरे आँख नहीं है देखने को, कान नहीं है सुनने को? अपने दोस्तों की महफिलें जमाते हैं आप, सभी के बीच बहू से चाय पकौड़े की फरमाइशी करते हैं आप, और वही बहू जब सभी को प्रेम से नाश्ता परोसती है तब उसी के सामने कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए तो जरा क्या गुजरती होगी उसके मन पर।
1: लेकिन मैं उसे थोड़े ही कहता हूँ।
2: लेकिन उस समय नई पीढ़ी यानी वो ही होती है ना वहाँ, उसे तो यही लगता होगा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए ये पिताजी को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा जा सकता।
1: अरे लेकिन ये तो उसका कर्तव्य है ना।
2: माना कि ये उसका कर्तव्य है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रही है तब आप उसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं?
1: देखो वसुधा, मेरे मन में तो ये बात नहीं होती। चारों ओर सभी के साथ जो होता हुआ देखता हूँ वही सबके सामने कह देता हूँ।
2: लेकिन इन सभी में आप शामिल नहीं है क्या? क्या आप अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकते कि आपके बेटे बहू कितनी अच्छी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं? आप लोग तो जैसे मौसम और राजनीति की चर्चा करते हैं वैसे ही आकर नई पीढ़ी की बुराई करने लग जाते हैं। आखिर कभी अपनी ओर भी तो देखिए।
1: वसुधा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सचमुच में बड़ा भाग्यवान हूँ, गुप्ता जी के बेटे बहू भी उनका ख्याल रखते हैं।
2: और आप दोनों ही हैं जो सबसे ज्यादा इस नई पीढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ जीवन बदलता है, उसकी शैली बदलती है, थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। अब आपके जमाने में हम औरतें घर में ही तो रहती थी, कितना मन होता था कि कुछ अपना कर पाए, लेकिन घर में कहाँ इजाजत थी। आजकल की बहू बेटियां अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पा रही हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
1: वसुधा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तो यही सोचता था कि यदि गुस्सा ना दिखाओ और रोब ना झाड़ो तो ये नए बच्चे हमारी बातें सुनेंगे ही नहीं।
3: पिताजी, हम आपकी बातें सिर्फ सुनना ही नहीं समझना भी चाहते हैं।
1: शांभवी
3: जी, पिताजी यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ करना चाहिए तो हमारी आपसे बस एक ही अपेक्षा होती है कि आप सभी से ये कहें कि हम आपका वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं।
0: आजकल की पीढ़ी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज।

श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक एवं उनकी मां की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यूक्रेन में 2022 में बड़े पैमाने पर रूसी आक्रमण शुरू होने और लगातार 5 साल तक युद्ध जारी रहने के कारण कई माताओं ने अपने प्रिय बेटों को खो दिया या उन माताओं के लिए अत्यंत दुखदायी है। लेकिन इस पीड़ा के बावजूद कुछ माताओं ने अपने साहस का परिचय दिया और वे प्रेरणा स्रोत बन गईं। ओलेना उन्हीं माताओं में से एक हैं। कहानी यूक्रेन के पुलिस ऑफिसर तारस कौरिक और उनकी मां ओलेना की है। तारस की फरवरी 2023 में मौत हो गई। यह दर्द, याद और उम्मीद से भरी कहानी है और साथ ही शहीद एवं लापता लोगों के परिवारों के लिए सांत्वना। मेरे लिए और हर माँ के लिए वह सबसे अच्छा बेटा था। इन्हीं शब्दों के साथ ओलेना अपने बेटे तारस कौरिक की याद करती हैं, जिनका जन्म 1988 में पश्चिमी यूक्रेन के हालिबोका गांव में हुआ था। उनकी कहानी में सालों के प्रवासन, युद्ध और दुख के साथ साथ एक हिम्मत भी शामिल है, जिससे एक माँ अपने बेटे की याद को संजोती और अपने दुख को दूसरों की सेवा में बदल देती है। 1999 में ओलेना ने यूक्रेन छोड़कर इटली में काम करने का फैसला किया। यह फैसला उन्होंने अपने मुश्किल आर्थिक स्थिति के कारण लिया था, ताकि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सके। तारस अपनी माँ से दूर बड़ा हुआ। अपना कैरियर चुनते हुए वह पुलिस बल में शामिल हुआ। उसने 2014 में देश के पूर्वी हिस्से में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लौटने के बाद उन्होंने पुलिस फोर्स में अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन बड़े पैमाने पर रूसी हमले ने उनके जीवन का रास्ता बदल दिया। मार्च 2022 में तारस को माइन क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए बूचा, एरपिन और होस्टोमेल शहरों में भेजा गया। वहीं उन्होंने युद्ध के सबसे बड़े असर देखे। ओलेना बताती हैं कि जब वे घर लौटे तो वे बहुत बदल गए थे। उन्होंने जो देखा था उसका उन पर बहुत असर पड़ा था। पत्नी और 8 साल के बच्चे के होने के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से मोर्चे पर जाने का फैसला किया। जब उनकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो उन्हें आज भी याद है। लोग युद्ध से भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं वहां ज्यादा काम का हूँ। यह फैसला डोनेस्क इलाके में अनाथ बच्चों के साथ काम करने के उनके अनुभव से भी आया था। उन्होंने अपने फैसले का कारण बताते हुए माँ से कहा, उन बच्चों का कोई नहीं बचा। 14 फरवरी 2023 को माँ और बेटे ने देर रात तक फोन पर बात की। तारस जानता था कि उसकी यूनिट को बखमुट इलाके में भेजा जाएगा। उसने अपनी माँ को बताया, 2 हफ्ते पहले यहाँ 250 आदमी पहुँचे थे, 1 हफ्ते बाद अब सिर्फ 50 जिंदा बचे। अगले दिन उसने उससे फिर से भरोसा दिलाया, हम मोर्चे पर जा रहे हैं, हम शनिवार को बात करेंगे, लेकिन वह फोन कॉल कभी नहीं आया। कई दिनों की परेशानी, तलाश और उम्मीद के बाद ओलेना इटली छोड़कर यूक्रेन चली गई। हफ्तों तक अपने बेटे को अस्पतालों में ढूंढा और इस सोच पर अड़ी रही कि उसे कैदी बना लिया गया है। वह कहती रही, मुझे यकीन है कि तारस जिंदा है। इंतजार के उन दिनों में ओलेना ने रेड क्रॉस का भी सहारा लिया और दूसरे परिवारों के साथ पोप फ्रांसिस से एक मुलाकात में शामिल हुई। बारी में संत निकोलस के पौत्र अवशेष के सामने एक ही प्रार्थना की कि वे मेरे बेटे को लौटा दें, चाहे जीवित या मृत। कुछ दिनों बाद तारस का शव मिला। वे याद करती हैं कि उनकी ममता के चीख मीलों तक सुनी जा सकती थी, एक ऐसा दर्द जिसे समय के साथ उनके परिवार और समाज ने सहारा दिया। आज ओलेना ने अपने समुदाय में एक संघ बनाया है जो शहीद सैनिकों की माताओं और पत्नियों को एक साथ लाता है। हर साल मदर्स डे पर वे उन लोगों की मदद करने के लिए एक साथ आने, प्रार्थना करने और याद करने का अवसर आयोजित करती हैं जो इसी तरह का दुख झेल रहे हैं। उन्होंने यह भी निश्चित किया कि 18 फरवरी 2023 को शहीद हुए तारस के सभी 22 साथियों को राजकीय सम्मान मिले, जिसको बाद में किया गया। उनकी दुआएं खासकर उन परिवारों के साथ हैं जो अभी भी अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। वे कहती हैं,
मैं अक्सर उन माताओं के बारे सोचती हूँ जो अभी भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। इस दर्द के लिए कोई शब्द नहीं है, हम बस जिंदा हैं। इसी अनुभव ने उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। एक माँ ने उनसे कहा, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे बात करनी है। इसलिए उन्हें यकीन है कि नज़दीकी, याद और इंसानियत में बहुत ताकत होती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक यूक्रेनी सैनिक और उनकी माँ की कहानी सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका आज कल की पीढ़ी, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, समाज में नई और पुरानी पीढ़ी की सोच से आज के बुजुर्ग दोराहे पर खड़े हैं। युवा पीढ़ी नई सोच के साथ जिंदगी के पथ पर दौड़ रही है तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। कुछ लोगों का मानना है कि बुजुर्ग आज के युवक युवतियों पर तीखी टीका टिप्पणी करते हैं। इनका कहना है कि उनके जमाने में तो मर्यादा थी। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि बुजुर्ग दकियानूसी परंपराओं को ढो रहे हैं। नई पीढ़ी को यह याद करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास जीवन का अनुभव है। उनका कहना भले ही दकियानूसी लगे पर वे उनकी भलाई के लिए ही कहते हैं। वहीं बुजुर्गों को भी अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाकर युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। युवा बुजुर्गों की मदद करें, उनकी छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखें तो बुजुर्गों को भी युवाओं की प्रशंसा करनी चाहिए, युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका आज कल की पीढ़ी।
1: क्या ये आजकल की पीढ़ी भी, जब देखो तब आपस में फिल्मों की ही बातें करते रहते हैं। अब वो शर्मा जी का बबलू देखो, अरे उसके पिताजी लाख कह रहे हैं कि दूसरे दिन परीक्षा है भाई, जरा पढ़ लिख लो। लेकिन नहीं, साहबजादे को तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो से मतलब है।
2: अब आप क्यों किसी और के लिए अपना खून जला रहे हैं? वो बबलू अच्छा खासा टॉपर लड़का है, और मान लिया कि कल को वो हो भी गया फेल तो उसकी फीस हमें तो नहीं भरनी है।
1: यही बस यही बात तुम्हारी मुझे पसंद नहीं है। हमें क्या लेना देना है? अरे भाई, हम सभी ऐसे सोचने लगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा?
2: आजकल सभी अपना अपना सोचने को सक्षम है। जो किसी और के विषय में सोचता है ना, उसे पंचायती कहा जाता है।
1: हाँ, आजकल सभी को अपना अपना काम करना जो पसंद है। किसे लेना देना है कि इस बूढ़े को क्या चाहिए? अरे बहू, शाम्भवी, वो केले के पकौड़े बनाए क्या? कई दिनों से मन कर रहा था।
3: बना दिए हैं पिताजी, आइए, प्याज और पालक के भी बनाए हैं।
1: हाँ हाँ, ठीक है, एक हाथ बाहर मेरे मन का क्या बना दिया, ऐसा ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि बस। आजकल किसी के पास समय ही कहाँ है कि माता पिता के पास बैठकर बातें करें।
4: पिताजी कहाँ हैं आप? अरे वाह, पकोड़े बनाए हैं। पिताजी, आज मैंने हाफ डे लिया है, शाम को हम सभी सिटी पार्क में जाएंगे, वहाँ से सेंट्रल होटल में खाना खाकर ही लौटेंगे।
1: क्या फिजूल खर्ची लगा रखी है, आजकल की पीढ़ी के पास पैसे क्या आ गए हैं, हर चीज को पैरों की नोक पर ही रखते हैं।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उसने छुट्टी ली है आपके लिए, ऊपर से आप आरोप लगा रहे हैं फिजूल खर्ची का।
1: और नहीं तो क्या, जवानी है, फुर्ती है, इसलिए पैसे का जोर दिखाना चाह रहा है। कल को मेरे जैसा रिटायर्ड हो जाएगा तब मालूम होगी पैसे की कीमत। यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछ रहा है।
3: पिताजी पानी, पकौड़े और लाऊं?
1: रहने दो। अरे शाम्भवी, वो गुप्ता जी ने कुछ कागज दिए थे टाइप करने को, हो गए हैं क्या?
3: जी पिताजी, हो गए हैं, आपके दराज के पास रख दिए हैं।
2: सुनिए जी, आपके लिए गुप्ता जी का फोन है।
1: हाँ हाँ, आया।
3: माँ, मैं क्लास जाकर आती हूँ।
2: हाँ बेटे, मुन्ना सो रहा है क्या?
3: जी सो रहा है, उसका दूध बनाकर रख दिया है, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहेगा।
2: तुम आराम से जाओ बेटा, आज क्लास में परीक्षा है ना?
3: जी, अच्छा मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा।
1: हाँ गुप्ता साहेब, बोलिए, क्या हाल है? अरे हमारा क्या है भाई, बस वक्त को कोस रहे हैं और उसी को काट रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी, अरे अब अपना जमाना थोड़ी रह गया है। आजकल जिसे देखो बस अपना ही सोचता है, अपना काम करने का किसी के पास समय थोड़ी है। अरे हाँ, वो तुम्हारे कागज बहू ने टाइप कर दिए हैं, अब आजकल की बहुओं से थोड़ा ही होता है घर का काम धाम, बस अपने बच्चों को सास के भरोसे छोड़कर चली जाती है। बस यार चल रहा है, चल रखता हूँ, अपना काम तो खुद ही करना होगा। अपने बुढ़ापे में कहाँ वो सुख जो अपने बाप दादाओं ने भोगा। अब कुछ पत्रिकाओं का चंदा भरना था, अब लगता हूँ उसी काम में।
4: पिताजी ये लीजिए।
1: ये क्या है?
4: ये रसीदें हैं पिताजी, आप हर महीने जो पत्रिकाएं मंगवाते हैं उनकी।
1: हाँ हाँ रख दे, जरा सा काम क्या कर दिया, प्रमाण पत्र मांगने चला है और वो आश्रम का ड्राफ्ट बनवा दिया था।
4: जी बनवा दिया था, और मैं खुद जाकर वहाँ के मैनेजर से मिल आया हूँ। वो कह रहे थे कि आश्रम में 5 और सदस्य आने वाले हैं, इसलिए उनका खर्चा मैंने नकद भर दिया है। और पिताजी, ये आपके लिए लाइब्रेरी से किताबें बदला कर लाया हूँ।

0: ये आजकल की पीढ़ी को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो मिश्रा जी को देखा था, कैसे नरम दिल बनते थे। सारी प्रॉपर्टी जीते जी बेटे के हवाले कर दी और अब जा पहुँचे वृद्धाश्रम।
1: देखिए जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि इस समय हमारे देश में 35 करोड़ से भी ज़्यादा बूढ़े हैं जो अपनी संतानों पर आश्रित हैं, और देश के वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कुल इनके 5% से ज़्यादा नहीं है जो घर से निकाले गए। तो क्या उन 5% नई पीढ़ी के लोगों के पीछे आप सभी को बदनाम करते फिरेंगे?
0: लेकिन हमारे बच्चे भी ऐसे निकले तो, यदि कल को उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल लिया तो?
1: देखिए, आप अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो आपके पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी आपको हाथों पर उठाकर रखेंगे, लेकिन ढेर सारी जायदाद रखकर भी आप ये फूटी जबान चलाएंगे तो आपके प्रति किसी के मन में क्या सम्मान रह जाएगा?
0: ये सब कुछ तुम्हें सुधीर ने कहा होगा।
1: वो क्यों कहने लगा कुछ भी? क्या मेरे आंख नहीं है देखने को, कान नहीं है सुनने को? अपने दोस्तों की महफिलें जमाते हैं आप, सभी के बीच बहू से चाय पकौड़े की फरमाइशी करते हैं आप, और वही बहू जब सभी को प्रेम से नाश्ता परोसती है तब उसी के सामने कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए तो जरा, क्या गुजरती होगी उसके मन पर?
0: लेकिन मैं उसे थोड़े ही कहता हूँ।
1: लेकिन उस समय नई पीढ़ी यानी वो ही होती है ना, वहाँ उसे तो यही लगता होगा कि चाहे कुछ भी कर लिया जाए, ये पिताजी को कभी भी संतुष्ट नहीं रखा जा सकता।
0: अरे लेकिन ये तो उसका कर्तव्य है ना।
1: माना कि ये उसका कर्तव्य है, लेकिन जब वो अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा रही है तब आप उसे सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं?
0: देखो वसुधा, मेरे मन में तो ये बात नहीं होती। चारों ओर सभी के साथ जो होता हुआ देखता हूँ, वही सबके सामने कह देता हूँ।
1: लेकिन इन सभी में आप शामिल नहीं हैं क्या? क्या आप अपने दोस्तों को ये नहीं बता सकते कि आपके बेटे बहू कितनी अच्छी तरह से आपका ख्याल रख रहे हैं? आप लोग तो जैसे मौसम और राजनीति की चर्चा करते हैं वैसे ही आकर नई पीढ़ी की बुराई करने लग जाते हैं। आखिर कभी अपनी ओर भी तो देखिए।
0: वसुधा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। सचमुच मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, गुप्ता जी के बेटे बहू भी उनका ख्याल रखते हैं।
1: और आप दोनों ही हैं जो सबसे ज्यादा इस नई पीढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ जीवन बदलता है, उसकी शैली बदलती है, थोड़ा हमें भी बदलना चाहिए। अब आपके जमाने में हम औरतें घर में ही तो रहती थी, कितना मन होता था कि कुछ अपना कर पाए, लेकिन घर में कहाँ इजाजत थी। आजकल की बहू बेटियां अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पा रही हैं तो उन्हें करने देना चाहिए।
0: वसुधा, तुमने सचमुच मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैं तो यही सोचता था कि यदि गुस्सा ना दिखाओ और रोब न झाड़ो तो ये नए बच्चे हमारी बातें सुनेंगे ही नहीं।
2: पिताजी, हम आपकी बातें सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी चाहते हैं।
0: शांभवी,
2: जी पिताजी, यदि आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ करना चाहिए तो हमारी आपसे बस एक ही अपेक्षा होती है कि आप सभी से ये कहें कि हम आपका वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसा आप चाहते हैं।
3: आजकल की पीढ़ी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, नुपुर दीक्षित और अनुराग तागड़े। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
4: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं।
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार को कस्तेल गंदोल्फो से विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जहां उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत पर चिंतन करते हुए कहा कि यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो में विश्वासियों के साथ वर्ष के 15वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज की दमविधि में सुसमाचार लेखक संत मती हमारे लिए बोने वाले का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है, जिसे ईश्वर शब्दों और शक्ति के रूप में हमारे हृदय में बोते हैं। यीशु स्वयं हमारे लिए शरीरधारी शब्द हैं, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपना जीवन दिया है, जिससे पिता निरंतर दुनिया में बीज के रूप में बोते हैं, जिससे वे अपने मरण के द्वारा अधिक फल उत्पन्न करें। पर यह सच है कि वे कभी कभी हम में कठोर और गैर जिम्मेदार भूमि को पाते हैं, एक भ्रमित भूमि के रूप में, बंजर पथरीली एवं कंटीली झाड़ियों के रूप में। लेकिन साथ ही वे ग्रहण करने वाले और उपजाऊ भूमि को भी पाते हैं, जहां हम प्रेम के चमत्कार को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजों को बदलने की शक्ति होती है, जैसे कि हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। यही कारण है कि पिता हमेशा बोने से कभी नहीं थकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए हमारी मानवीय कमजोरियों से कहीं अधिक मजबूत है।
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: संत जॉन क्रिसोस्टम का हवाला देते हुए, जो ईश्वर के वचन को बीज के रूप में संदर्भित करते हैं, पोप ने कहा, कांटों पथरीली भूमि या राह पर बोना कैसे तर्कसंगत हो सकता है? बीजों और भूमि के संदर्भ में यह तर्कहीन लगता है, लेकिन आत्मा और धर्म सिद्धांत के संबंध में यह संभव है, क्योंकि ईश्वर के हाथों में यह संभव है कि वे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दें, पैरों से रौंदे जाने वाले रास्ते या सभी चलने वालों के लिए खुली भूमि को एक समृद्ध धरती बना दें और कांटों को दूर कर दें, जिससे बीज सुरक्षित बढ़ सकें। पोप ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर की उदारता अनुभवहीन नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है। वे हमारे अंदर एक अच्छी संभावना को देखते हैं, जिससे हम स्वयं अपने में कभी कभी अनुभव करने में असफल होते। यही कारण है कि ईश्वर, जो हमारे हृदय की भूमि को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते, हमारे ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। यदि हम विश्वास में उन्हें समर्पित होते और उनमें बने रहते हैं, तो हम प्रतिदिन विकास करते हैं। इस भांति जिस उदारता एवं विश्वास में बीजों को बोया जाता है और जिस विनम्रता एवं खुलेपन से हम उन्हें ग्रहण करते हैं, पौत्र आत्मा के फलों का विकास एवं प्रसार हमारे अंदर होता है। संत पौलुस हमें शिक्षा देते और कहते हैं कि वे फल हमारे लिए प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, निष्ठा, विनम्रता और संयम हैं। हमारे विश्व में इन फलों की कितनी आवश्यकता है, जिससे वह उनके द्वारा परिपूर्ण और परिवर्तित हो सके। अतः संत पापा ने कहा कि हम विशेषकर गर्मी छुट्टी के इन दिनों में सुनने, अध्ययन करने और ईश वचन पर चिंतन करने के लिए समय दें, जिससे हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर अर्थपूर्ण ढंग से शांति एवं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। इस भांति हम शरीर और आत्मा की नवीनता में अपने कार्यों को करने हेतु लौट सकेंगे तथा सुसमाचार के संदेश को घोषित करने और ईश्वर के राज्य के विकास हेतु अपना योगदान दे सकेंगे। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए पोप ने कहा,
1: Ci aiuti in questo, Maria, regina degli apostoli e stella dell'evangelizzazione.
0: माता मरियम, प्रेरितों की रानी और सुसमाचार का सितारा, इस कार्य में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया. उन्होंने कहा,
1: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: मैं इस सुंदर गांव कस्तल गंदोल्फो के निवासियों का अभिवादन करता हूं, जहां मैं कुछ दिन आराम कर रहा हूं. प्रार्थना में विश्व के विभिन्न हिस्सों के तीर्थयात्री एवं पर्यटक भी उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित कर पोप ने कहा,
1: Accolgo con gioia tutti voi pellegrini.
0: दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्री, मैं सहर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ. फिर दुखद घटनाओं की याद करते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मध्य पूर्व, यूक्रेन एवं दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में फिर से जंग की हवाएं बह रही हैं, जो हिंसा, आतंक एवं मौत फैला रही हैं और एक बार फिर कई बेगुनाह लोगों पर हमला कर रही हैं. आइए हम इन हवाओं को उम्मीद एवं शांति की लौ को बुझाने ना दें, भले ही वह कमजोर और डगमगाती हुई लगे. उन्होंने आगे कहा,
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
0: मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि बातचीत, मुलाकात और कूटनीति का रास्ता लगातार अपनाया जाएगा. यही एकमात्र रास्ता है जो सही और स्थायी शांति की ओर ले सकता है, जिसमें लोग मेल मिलाप, आपसी सुरक्षा एवं हर इंसान की इज्जत का सम्मान करते हुए रह सकते हैं. उसके बाद सागर रविवार की याद करते हुए पोप ने कहा, आज सागर रविवार है. मेरी संवेदना दुनिया भर के सभी नाविकों, मछुआरों और बंदरगाह कर्मचारियों के साथ हैं, जो अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं और कभी कभी समुद्र में चल रहे संघर्षों के भय से परेशान रहते हैं. फिर भी वे अपने धैर्य एवं चुपचाप किए जाने वाले कार्य के माध्यम से अनेक लोगों के व्यापार एवं जीवन को सहारा देते हैं. उसके बाद पोप ने पोलैंड के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन दिया, जो जसनागोरा के माता मरियम तीर्थस्थल पर वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित हुए थे, ताकि वे मिशनरी शिष्य की तरह सुसमाचार के प्रसंचित साक्षी बन सकें. और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की.
1: बोना डोमेनिका टूटी.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन में युद्ध की क्रूरता की वजह से परेशान जीवित और मृत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने विश्वासियों से दुनिया और परिवारों में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। ये संत पापा के पत्र का मुख्य विषय है, जो उन्होंने राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर को लिखा है, जिन्हें संत पापा ने यूक्रेन में लैटिन रीति की कलीसिया की संरचना को ठीक करने की 35वीं सालगिरह का समारोह मनाने के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। यह समारोह 19 जुलाई को बाडिक्यू में माउंट कार्मेल की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थालय में होगा। पत्र में संत पापा लियो ने संत पापा ग्रेगोरी 9वें के 1234 में भेजे गए पत्र के शब्दों को याद किया, जो उन्होंने आज के यूक्रेन के इलाके में रहने वाले लैटिन रीति के पुरोहितों और विश्वासियों के लिए भेजा था। उस पत्र में संत पापा ग्रेगोरी ने लिखा कि कलीसिया अपने भक्तों और विनम्र बच्चों के प्रति खास दया दिखाती है, ताकि वे बुरे लोगों के हमलों से परेशान न हों। संत पापा लियो लिखते हैं कि आने वाली सदियों में उस देश में रहने वाले कैथोलिक पुरोहितों और विश्वासियों ने इतिहास की कई घटनाओं के बीच विश्वास की मजबूती से गवाही दी, खासकर 20वीं सदी के दौरान, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन सोवियत विचारधारा से प्रेरित शासन के अधीन था। उस समय उस इलाके में कैथोलिक कलीसिया पर क्रूर जुल्म किया गया, जिसे नागर अधिकारियों ने संगठित किया था और अंजाम दिया था, जिसका मकसद लोगों के बीच से इसे पूरी तरह खत्म करना था। संत पापा ने बताया कि यूक्रेनी कलीसिया को बाद में नया जीवन मिला और समुदाय बढ़ती गई, और अब यह अपने संस्थानों की बहाली की 35वीं सालगिरह के साथ साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की यूक्रेन की प्रेरितिक यात्रा की 25वीं सालगिरह मना रही है। संत पापा महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर से यह भी कहते हैं कि वे समारोहों में भाग लेने वालों को दुनिया और परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करने और ईश्वर की आज्ञाओं पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी ने रविवार को बताया कि संत पापा लियो 14वें सोमवार 14 सितंबर को सुबह 11 बजे वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी का दौरा करेंगे और प्रेरितिक प्रदर्शन चक्र कैटास्ट्रोफी एंड वंडर के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर 2026 से 14 मई 2027 तक हफ्ते के कुछ चुने हुए दिनों में आगंतुकों के लिए खुली रहेगी। यह प्रदर्शन आज के जमाने के तीन लोगों, फ्रेंच आर्टिस्ट जे आर, अमेरिकन टाइपोग्राफर बिल मोरन और इटालियन शेफ पियर आंजेली के कामों को एक साथ लाता है, जो संत पापा की लाइब्रेरी के संग्रह और जगहों के साथ बातचीत करते हैं और पानी को एक खतरे और एक स्रोत दोनों के तौर पर दिखाते हैं। तीनों कलाकार साथी अपनी अपनी कला प्रदर्शन के जरिए लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह को नए तरीके से दिखाते हैं। उधर 20 से 26 जुलाई तक जकार्ता में होने वाले एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं प्लेनरी असेंबली के लिए अपने विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस को लिखे एक पत्र में संत पापा लियो 14वें ने एशिया की कलीसिया से अपील की है कि वे अपने कामों में ईश्वर को और अपने फैसलों में केंद्र में इंसान को रखें, बिना इस डर के कि हमारे समय के निर्माण स्थल पर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। समन्वय के निर्माता बने, बाबिल के वास्तुकार नहीं। आने वाले राज्य के सेवक बने, न कि उन टावरों के मालिक जो गिरने वाले हैं। इन शब्दों के साथ संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास में की गई अपनी अपील को दोहराया कि ईश्वर को हमारे कामों के क्षितिज पर और इंसान को हमारे फैसलों के केंद्र में रखें। संत पापा लियो ने विश्वासियों और अपने भाई धर्माध्यक्षों को प्रोत्साहित किया कि वे हमारे समय के निर्माण स्थल पर अपने हाथ गंदा करने से न डरें, इस उम्मीद से कि एशिया की प्यारी कलीसिया
विश्वास और मानवता में हमेशा फूलती और फलती रहे। उधर सोमालिया में 2 मिलियन से ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, खासकर देश के उत्तरी इलाकों में। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ओचा ने यह घोषणा करते हुए बताया कि अप्रैल और जून के बीच बहुत कम बारिश ने देश के उत्तरी इलाकों में संकट को और बढ़ा दिया है, जहां अधिकारी तुरंत मदद की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5,70,000 से ज्यादा लोगों को पानी की जरूरत है और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को खाने की मदद की जरूरत है। सोमालिया में जिहादियों और सेना के बीच झड़पें जारी हैं। मानव संकट से 9 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओचा ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ने का खतरा है। लगभग 2,50,000 लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कम से कम 94 कुएं बंद हैं या सिर्फ कुछ हद तक काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं, जिससे सबसे कमजोर परिवारों के लिए इस स्रोत तक पहुंच और भी मुश्किल हो गया है। कुपोषण में बढ़ोतरी भी चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 लाख से ज्यादा सोमाली बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। उधर इसराइल अपना हमला जारी रखे हुए है। कल ही गाजा पट्टी में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में सबरा इलाके में एक हमले की पुष्टि की, जिसमें हमास के हथियार बनाने की जगह को निशाना बनाया गया, जो अभी भी संगठन की संगठनात्मक क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिश की बातचीत का साफ उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है। हालांकि नुसरत में एक कैंप पर हुए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें कथित तौर पर एक 9 साल की बच्ची मारी गई। इस बीच लेबनानी मोर्चा और राजनयिक स्तर पर इसराइल और बेरूत के बीच बातचीत का एक नया दौर रोम स्थित अमेरिकी दूतावास में 14 और 15 जुलाई को होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधि मंडल पहले ही रोम शहर पहुँच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन को सक्रिय करने की बात हो रही है, जहां से इजरायली सेना हट जाएगी और उन्हें लेबनानी सेना को सौंप देगी, बशर्ते कि शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह भी उस इलाके से हट जाए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौथवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: पोप लियो 14वें ने अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान रविवार को कस्तेल गंदोल्फो से विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जहां उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत पर चिंतन करते हुए कहा कि यह हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है। पोप लियो 14वें ने कस्तेल गंदोल्फो में विश्वासियों के साथ वर्ष के 15वें रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। कस्तेल गंदोल्फो के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए पोप ने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार। आज के दमविधि में सुसमाचार लेखक संत मती हमारे लिए बोने वाले का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए ईश्वर की उदारता एवं विश्वास को प्रकट करता है, जिसे ईश्वर शब्दों और शक्ति के रूप में हमारे हृदय में बोते हैं। यीशु स्वयं हमारे लिए शरीरधारी शब्द हैं, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपना जीवन दिया है, जिससे पिता निरंतर दुनिया में बीज के रूप में बोते हैं, जिससे वे अपने मरण के द्वारा अधिक फल उत्पन्न करें। पर यह सच है कि वे कभी कभी हम में कठोर और गैर जिम्मेदार भूमि को पाते हैं, एक भ्रमित भूमि के रूप में, बंजर पथरीली एवं कंटीली झाड़ियों के रूप में। लेकिन साथ ही वे ग्रहण करने वाले और उपजाऊ भूमि को भी पाते हैं, जहां हम प्रेम के चमत्कार को देख सकते हैं, जिसमें सारी चीजों को बदलने की शक्ति होती है, जैसे कि हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। यही कारण है कि पिता हमेशा बोने से कभी नहीं थकते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका प्रेम हमारे लिए हमारी मानवीय कमजोरियों से कहीं अधिक मजबूत है।
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: संत जॉन क्रिस्तस्तम का हवाला देते हुए, जो ईश्वर के वचन को

0: बीज के रूप में संदर्भित करते हैं। पोप ने कहा, कांटों, पथरीली भूमि या राह पर बोना कैसे तर्कसंगत हो सकता है? बीजों और भूमि के संदर्भ में यह तर्कहीन लगता है, लेकिन आत्मा और धर्म सिद्धांत के संबंध में यह संभव है, क्योंकि ईश्वर के हाथों में यह संभव है कि वे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदल दें। पैरों से रौंदे जाने वाले रास्ते या सभी चलने वालों के लिए खुली भूमि को एक समृद्ध धरती बना दें और कांटों को दूर कर दें, जिससे बीज सुरक्षित बढ़ सकें। पोप ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर की उदारता अनुभवहीन नहीं बल्कि विवेकपूर्ण है। वे हमारे अंदर एक अच्छी संभावना को देखते हैं, जिससे हम स्वयं अपने में कभी कभी अनुभव करने में असफल होते। यही कारण है कि ईश्वर, जो हमारे हृदय की भूमि को हमसे अधिक अच्छी तरह जानते, हमारे ऊपर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। यदि हम विश्वास में उन्हें समर्पित होते और उनमें बने रहते हैं, तो हम प्रतिदिन विकास करते हैं। इस भांति जिस उदारता एवं विश्वास में बीजों को बोया जाता है और जिस विनम्रता एवं खुलेपन से हम उन्हें ग्रहण करते हैं, पौत्र आत्मा के फलों का विकास एवं प्रसार हमारे अंदर होता है। संत पौलुस हमें शिक्षा देते और कहते हैं कि वे फल हमारे लिए प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, निष्ठा, विनम्रता और संयम हैं। हमारे विश्व में इन फलों की कितनी आवश्यकता है, जिस सेवा उनके द्वारा परिपूर्ण और परिवर्तित हो सके। अतः संत पापा ने कहा कि हम विशेषकर गर्मी छुट्टी के इन दिनों में सुनने, अध्ययन करने और ईश वचन पर चिंतन करने के लिए समय दें, जिससे हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर अर्थपूर्ण ढंग से शांति एवं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें। इस भांति हम शरीर और आत्मा की नवीनता में अपने कार्यों को करने हेतु लौट सकेंगे तथा सुसमाचार के संदेश को घोषित करने और ईश्वर के राज्य के विकास हेतु अपना योगदान दे सकेंगे। तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए पोप ने कहा,
1: Ci aiuti in questo, Maria, regina degli apostoli e stella dell'evangelizzazione.
0: माता मरियम प्रेरितों की रानी और सुसमाचार का सितारा, इस कार्य में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत पोप ने विश्वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा,
1: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: मैं इस सुंदर गांव कस्तेल गंदोल्फो के निवासियों का अभिवादन करता हूं, जहां मैं कुछ दिन आराम कर रहा हूं। प्रार्थना में विश्व के विभिन्न हिस्सों के तीर्थयात्री एवं पर्यटक भी उपस्थित थे, जिन्हें संबोधित कर पोप ने कहा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए तीर्थयात्री, मैं सहर्ष आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर दुखद घटनाओं की याद करते हुए उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मध्य पूर्व, यूक्रेन एवं दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में फिर से जंग की हवाएं बह रही हैं, जो हिंसा, आतंक एवं मौत फैला रही हैं और एक बार फिर कई बेगुनाह लोगों पर हमला कर रही हैं। आइए हम इन हवाओं को उम्मीद एवं शांति की लौ को बुझाने ना दें, भले ही वह कमजोर और डगमगाते हुए लगे। उन्होंने आगे कहा,
1: Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
0: मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि बातचीत, मुलाकात और कूटनीति का रास्ता लगातार अपनाया जाएगा। यही एकमात्र रास्ता है जो सही और स्थायी शांति की ओर ले सकता है, जिसमें लोग मेल मिलाप, आपसी सुरक्षा एवं हर इंसान की इज्जत का सम्मान करते हुए रह सकते हैं। उसके बाद सागर रविवार की याद करते हुए पोप ने कहा, आज सागर रविवार है। मेरी संवेदना दुनिया भर के सभी नाविकों, मछुआरों और बंदरगाह कर्मचारियों के साथ हैं, जो अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं और कभी कभी समुद्र में चल रहे संघर्षों के भय से परेशान रहते हैं। फिर भी वे अपने धैर्य एवं चुपचाप किए जाने वाले कार्य के माध्यम से अनेक लोगों के व्यापार एवं जीवन को सहारा देते हैं। उसके बाद पोप ने पोलैंड के तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहन दिया जो जसनागोरा के माता मरियम तीर्थस्थल पर वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए एकत्रित हुए थे ताकि वे मिशनरी शिष्य की तरह सुसमाचार के प्रसंचित साक्षी बन सकें। और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: बोना डोमेनिका टुटी।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने यूक्रेन में युद्ध की क्रूरता की वजह से परेशान जीवित और मृत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने विश्वासियों से दुनिया और परिवारों में शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का भी आग्रह किया। ये संत पापा के पत्र का मुख्य विषय है, जो उन्होंने राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर को लिखा है, जिन्हें संत पापा ने यूक्रेन में लैटिन रीति की कलीसिया की संरचना को ठीक करने की 35वीं सालगिरह का समारोह मनाने के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। यह समारोह 19 जुलाई को बाडिकीव में माउंट कार्मेल की माता मरियम के राष्ट्रीय तीर्थालय में होगा। पत्र में संत पापा लियो ने संत पापा ग्रेगोरी 9वें के 1234 में भेजे गए पत्र के शब्दों को याद किया, जो उन्होंने आज के यूक्रेन के इलाके में रहने वाले लैटिन रीति के पुरोहितों और विश्वासियों के लिए भेजा था। उस पत्र में संत पापा ग्रेगोरी ने लिखा कि कलीसिया अपने भक्तों और विनम्र बच्चों के प्रति खास दया दिखाती है, ताकि वे बुरे लोगों के हमलों से परेशान न हों। संत पापा लियो लिखते हैं कि आने वाली सदियों में उस देश में रहने वाले कैथोलिक पुरोहितों और विश्वासियों ने इतिहास की कई घटनाओं के बीच विश्वास की मजबूती से गवाही दी, खासकर 20वीं सदी के दौरान, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन सोवियत विचारधारा से प्रेरित शासन के अधीन था। उस समय उस इलाके में कैथोलिक कलीसिया पर क्रूर जुल्म किया गया, जिसे नागर अधिकारियों ने संगठित किया था और अंजाम दिया था, जिसका मकसद लोगों के बीच से इसे पूरी तरह खत्म करना था। संत पापा ने बताया कि यूक्रेनी कलीसिया को बाद में नया जीवन मिला और समुदाय बढ़ती गई, और अब यह अपने संस्थानों की बहाली की 35वीं सालगिरह के साथ साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की यूक्रेन की प्रेरितिक यात्रा की 25वीं सालगिरह मना रही है। संत पापा महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर से यह भी कहते हैं कि वे समारोहों में भाग लेने वालों को दुनिया और परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करने और ईश्वर की आज्ञाओं पर अडिग रहने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी ने रविवार को बताया कि संत पापा लियो 14वें सोमवार 14 सितंबर को सुबह 11 बजे वाटिकन प्रेरितिक लाइब्रेरी का दौरा करेंगे और प्रेरितिक प्रदर्शन चक्र कैटास्ट्रोफी एंड वंडर के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर 2026 से 14 मई 2027 तक हफ्ते के कुछ चुने हुए दिनों में आगंतुकों के लिए खुली रहेगी। यह प्रदर्शन आज के जमाने के तीन लोगों, फ्रेंच आर्टिस्ट J.R., अमेरिकन टाइपोग्राफर बिल मोरन और इटालियन शेफ पियर आंजेली के कामों को एक साथ लाता है, जो संत पापा की लाइब्रेरी के संग्रह और जगहों के साथ बातचीत करते हैं और पानी को एक खतरे और एक स्रोत दोनों के तौर पर दिखाते हैं। तीनों कलाकार साथी अपनी अपनी कला प्रदर्शन के जरिए लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह को नए तरीके से दिखाते हैं। उधर 20 से 26 जुलाई तक जकार्ता में होने वाले एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ FABC की 12वीं प्लेनरी असेंबली के लिए अपने विशेष दूत कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस को लिखे एक पत्र में संत पापा लियो 14वें ने एशिया की कलीसिया से अपील की है कि वे अपने कामों में ईश्वर को और अपने फैसलों में केंद्र में इंसान को रखें, बिना इस डर के कि हमारे समय के निर्माण स्थल पर हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। समन्वय के निर्माता बने, बाबिल के वास्तुकार नहीं। आने वाले राज्य के सेवक बने, न कि उन टावरों के मालिक जो गिरने वाले हैं। इन शब्दों के साथ संत पापा लियो 14वें ने अपने विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमानिटास में की गई अपनी अपील को दोहराया कि ईश्वर को हमारे कामों के क्षितिज पर और इंसान को हमारे फैसलों के केंद्र में रखें। संत पापा लियो ने विश्वासियों और अपने भाई धर्माध्यक्षों को प्रोत्साहित किया कि वे हमारे समय के निर्माण स्थल पर अपने हाथ गंदा करने से न डरें, इस उम्मीद से कि एशिया की प्यारी कलीसिया
विश्वास और मानवता में हमेशा फूलती और फलती रहे। उधर सोमालिया में 2 मिलियन से ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हैं, खासकर देश के उत्तरी इलाकों में। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ओचा ने यह घोषणा करते हुए बताया कि अप्रैल और जून के बीच बहुत कम बारिश ने देश के उत्तरी इलाकों में संकट को और बढ़ा दिया है, जहां अधिकारी तुरंत मदद की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5,70,000 से ज्यादा लोगों को पानी की जरूरत है और लगभग 1.5 मिलियन लोगों को खाने की मदद की जरूरत है। सोमालिया में जिहादियों और सेना के बीच झड़पें जारी हैं। मानव संकट से 9 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओचा ने चेतावनी दी है कि हालात और बिगड़ने का खतरा है। लगभग 2,50,000 लोग सूखे से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि कम से कम 94 कुएं बंद हैं या सिर्फ कुछ हद तक काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ गई हैं, जिससे सबसे कमजोर परिवारों के लिए इस स्रोत तक पहुंच और भी मुश्किल हो गया है। कुपोषण में बढ़ोतरी भी चिंता की बात है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 4 लाख से ज्यादा सोमाली बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। उधर इजराइल अपना हमला जारी रखे हुए है। कल ही गाजा पट्टी में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक 9 साल की बच्ची भी शामिल है। इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा शहर में सबरा इलाके में एक हमले की पुष्टि की, जिसमें हमास के हथियार बनाने की जगह को निशाना बनाया गया, जो अभी भी संगठन की संगठनात्मक क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिश की बातचीत का साफ उल्लंघन करते हुए काम कर रहा है। हालांकि नुसरत में एक कैंप पर हुए हमले की पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें कथित तौर पर एक 9 साल की बच्ची मारी गई। इस बीच लेबनानी मोर्चा और राजनयिक स्तर पर इसराइल और बेरूत के बीच बातचीत का एक नया दौर रोम स्थित अमेरिकी दूतावास में 14 और 15 जुलाई को होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधि मंडल पहले ही रोम शहर पहुँच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में 2 पायलट जोन को सक्रिय करने की बात हो रही है, जहां से इजरायली सेना हट जाएगी और उन्हें लेबनानी सेना को सौंप देगी, बशर्ते कि शिया मिलिशिया हिजबुल्ला भी उस इलाके से हट जाए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।